0: रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सच्ची ना
1: दरवाट पर खर्च।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਜ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
2: The discussions also
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: Can enter the Venezuelan market successfully.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने

0: भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ सुनिए प्रोग्राम गांधी चर्चा। इस प्रोग्राम च तुसी महात्मा गांधी जी दे प्रेरक प्रसंग सुनते हो।

राजा जनक की यज्ञशाला में शिव के जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर हिला तक नहीं सके, उसे खंडित करने के लिए गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर श्री राम उठ खड़े हुए। इधर लक्ष्मण ने अग्रज को धनुष की ओर ताकते देखकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर दिक्पालों, कच्छप तथा शेषनाग और वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्रीराम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय, सभी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर भव सागर पार कर जाना चाहते हैं। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते

0: एक लाभांश मिति साधना ने द्रव्यता उपायांच उपयुज्य विपण्याः विकृति परिहर्तुं वित्तीय स्थिरतां च समर्थयितुं शक्नोति। एसबीआई इत्यनेन संसूचितं यत् भारतं सापेक्षक रूपेण प्रबलं समष्टि आर्थिक मूल्यं निरन्तरं अनुभवति तथा च वर्तमान मुद्रास्फीति प्रतिसंधि बहुधा बाह्य कारणानां विशेषतः पश्चिम एशियायाः भू राजनैतिक समस्यया अशोधित मूल्यानां वर्धनेन च प्रेरिता अस्ति। लोकसभायाः पूर्व महासचिवः संवैधानिक विशेषज्ञः च सुभाष सी कश्यपः दीर्घकालं यावत् अस्वस्थतायाः अनन्तरं गतदिने राजधान्यां नवदिल्ल्यां निधनम् उपगतः। असौ 97 वर्षीयः आसीत्। एकं राष्ट्रम् एक निर्वाचनम् इति विधे निर्माणाय संघटितायाः उच्चस्तरीय समित्याः सदस्यः अपि आसीत् डॉक्टर कश्यपः। अधिक पुस्तकानां लेखकः सः गतशताब्दस्य 83 तमाब्दात् 90 तमशताब्दं यावत् लोकसभायाः महासचिवरूपेण कार्यं कृतवान्। प्रवर्तन निदेशालयेन मिजोरम राज्यस्य चंपाई क्षेत्रे नव परिसरेषु अन्वेषणं कृतम्। एतत् अन्वेषणं धनशोधन सम्बद्धस्य प्रकरणस्य सन्दर्भे वर्तते यत्र 70 अधिक 900 कोटि रूप्यकाणां अपराधस्य आयः सम्मिलितः अस्ति। प्रवर्तन निदेशालयेन उक्तं यत् अन्वेषणेन ज्ञातं यत् बर्मा देशस्य नागरिकाः जोखावथर चंपाई नगरयोः माध्यमेन सीमा शुल्कं विना तीआउ नद्याः पारं भारते शुष्कवृक्षाणां तस्करणं विधाय सीमायां स्थानीय सुगमकर्ताभ्यः च वस्तुवाहनानि समर्पयन्ति स्म। विदेशमंत्री डॉक्टर जयशंकरः यः नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रीज इत्यनेन सह अमिलत्। द्वावेव नेतारो भारत वेनेजुएला देशयो संबंध विषये चर्चां कृतवन्तौ। ऊर्जा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा वाहन च इत्यादि क्षेत्राणि अधिकृत्य सहयोगं वर्धयितुं नूतनान् अवसरान् च अन्विष्यताम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर के 7 बज चुके ने, हुण तक दियां मुख खबरां सुनो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा प्रगटाया कि पहली विश्व योग चैंपियनशिप योग आसन नूं एक आलमी खेड पछाण देगी ते नौजवानों लई कई तरह के मौके खोलेगी। प्रधानमंत्री ने नवी दिल्ली विच वेनेजुएला दे कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स नाल गलबात कीती। दोवां नेतावां ने समुच्चे दुवल्ले संबंधा की समीक्षा की। शहरी हवाबाजी मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार वल्लों हवाबाजी ईंधन दीआं कीमतां नूं स्थिर करन लई बजट सहायता प्रदान करन दा फैसला आम जनता दे हित विच लिया गया है। सरकार ने एक बार फिर नागरिकां नूं ऊर्जा की बचत करन, LPG की घबराहट च जरूरत तो वध खरीदारी जां बुकिंग ना करन ते PNG इंडक्शन स्टोव ते विकल्पिक ईंधन की वरतों करन की अपील की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ते नितिन गडकरी वालों भारत की पहली फ्लैक्स फ्यूल मुसाफिर कार लॉन्च की गई। अज विश्व चुगिरदा दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने एशियन रिले अथलैटिक्स चैंपियनशिप 2027 दी तैयारियां ते बुनियादी ढांचे दी योजनावां दा जायजा लिया। पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों वालों आप खुदरे ढंग नाल फीसां विच वाधे ते रोक लई कानून दा खरड़ा बनाउण दे हुकम दित्ते ते पंजाब पुलिस वालों वड्डी दहशतगर्दी साजिश नाकाम। 2.5 किलो RDX आधारित IED समेत 2 मुलजिम काबू किए गए। ये सन हुण तक दीआं मुख खबरां। अगलिया मुख खबरां तुसी सुनोगे सवेरे 9 बजे। आकाशवाणी जलंधर ते हुण प्रोग्राम सोनी सवेर।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀ ਸਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ।
1: ਯੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਮੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾ ਕੋ ਦਿਖਾਤਾ ਥਾ। ਕੱਲ ਮੈਨੇ ਲਾਈਟ ਬਿੱਲ ਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇਖਾ ਤੋ ਸੋਚਾ ਇਸਨੇ ਪੱਕਾ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕੀਆ ਹੋਗਾ, ਵਰਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਕੈਸੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਪੂਛਾ ਤੋ ਬੋਲਤਾ ਹੈ, ਭਈਆ ਸਭ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਦਯਾ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਓ ਯੇ ਸਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ।
2: ਪੀਐਮ ਸੂਰਯ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਜੁੜਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇ pmsuryaghar.gov.in।
3: ਹਰ ਘਰ ਸੂਰਯ ਘਰ।
4: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग

0: से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
1: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की।

0: और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को पांचवी पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने

0: आपातगीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है। किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है। सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and Constitutional Expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
3: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the 4-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
2: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yog and promote healthier lifestyles across communities.
4: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देश

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: कार तो काम करो, वादू तनखा, बस एक क्लिक ते, वाजी वाह।
2: फसी
3: अनजान लिंकां ते क्लिक ना करो, RBI कहंदा है
4: जानकार बनो, सुचेत रहो।
0: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਬੇਗਮ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ।

0: जय हिंद दोस्तों, एक पेड़ माँ के नाम, भारत सरकार की एक अजिही मुहिम जिहड़ी ना सिर्फ माँ प्रति सत्कार नूं दर्शाउंदी है बल्कि धरती की सेह संभाल प्रति भी सानू सुचेत करती है। किस तरह हुई इस मुहिम की शुरुआत ते हुण तक की कुछ रहे इसके प्रभाव, अज इस बारे विशेष चर्चा करांगे। मैं हाँ राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार विभाग पंजाब का मुखी, और इस बारे चर्चा करन लई साडे स्टूडियो च मौजूद ने श्री एस एम सिंह, जो एक सोशल वर्कर ने और इस मुहिम नाल बहुत देर तो जुड़े हुए ने, और इन्हां दे नाल ने हरजोत शर्मा, वह भी इस मुहिम नाल जुड़े हुए ने अते एक वक्रे तरीके नाल वॉलंटेरली इस लई काम कर रहे ने। बहुत बहुत स्वागत है एस एम सिंह जी और हरजोत शर्मा जी।
1: धन्यवाद वाली साहब।
0: दोस्तों, जिवें कि तुसीं जानते ही हो कि साडे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई वाली भारत सरकार नूं 12 साल पूरे हो गए ने। इस एक दहाके तो भी वध समय दौरान साडे भारत देश ने हर एक खेत्र विच तरक्की दियां बहुत पुलांगा पुटियां ने। भारत सरकार ने देश भर के विकास लई अते देश वासियां लई बहुत सारी योजनावां उलीकियां अते उन्हां नूं नेपरे चाड़िया। इन्हां विचों ही एक मुहिम है एक पेड़ माँ के नाम, जो कि जिथे साडियां मावां

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगर पारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
3: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
3: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
3: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
3: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई

0: गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
1: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते
0: क्या
1: हैं।
0: बात है।
1: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
0: क्या बात है। श्रोताओ, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
1: और श्रोताओं ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है।
0: जी
1: यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
0: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
1: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है।
0: जी
1: यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
0: जी
1: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
0: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: शांत शांत,
1: आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
3: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए, हम
1: आपकी सेवा में सदैव तत्पर
3: हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके इस

0: स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
1: जी महाराज, पूछिए क्या प्रश्न है आपका।
0: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
2: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
3: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
0: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
3: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
4: जी महाराज, बहुत कृपा।
5: महाराज की जय हो।
6: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
0: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
3: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
0: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
3: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
0: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
3: इसमें संदेह नहीं है महाराज, कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
0: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
3: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
7: भाई, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
8: हुआ? मेरे साथ मिला, मुझे भी नकली हो सकता है।
7: क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
9: महाराज की जय।
0: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
3: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें। महाराज
0: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
3: जी धन्यवाद महाराज। महाराज, हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
0: क्या? और कोई शंका?
3: जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
0: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
10: महाराज की जय।
0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया हो।

0: ذرا سوچئے، राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए؟ सोचिए सोचिए، आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी۔ जी बिल्कुल सही۔ साथियों، हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें۔ यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए، लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं۔ और हाँ، याद रखिए، किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता، लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है۔
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे، कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल، ध्वनि अंकन मंजू कुमारी، कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान، मार्गदर्शन विमलेश चौधरी۔

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे, कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
2: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चलूं।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं, वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है।

पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: तुसी NCERT वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग सुन रहे सी। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से अल्पकालिक उधार दर या रेपो दर को 5.25% पर तटस्थ बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%.
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। बैंक ने अनिवासी भारतीयों और प्रवासी भारतीयों द्वारा इक्विटी उपकरणों में निवेश की सीमा भी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम श्री मोदी का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह अत्याधुनिक एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार प्रणालियों और स्वचालित मौसम स्टेशनों के विस्तारित नेटवर्क के साथ मौसम संबंधी प्रेक्षणों को एकीकृत करेगा, जिससे वास्तविक समय में मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान की सटीकता और पूर्व चेतावनी क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलू ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ थे।

न्यूजीलैंड तो फरमाइश भेज रहे ने जी, अभिषेक जैन, सानिया जैन, मनजिंदर संधू, जशनप्रीत, बॉबी ते इन्हों का सारा परिवार, इन्होंने सारे दिल मिली फरमाइश ते सुनते हाँ जी रोशन प्रिंस की आवाज़ में ये गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच।

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
2: After a detailed assessment,
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय

0: परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपये के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना के औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12:05 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ।

0: मैं सौ सौ रुख पेला, मैं सौ सौ रुख पेला, रुखता हरे परे।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: यूरो किड्स में स्कूल रेडीनेस लास्ट मिनट नहीं सिखाई जाती, ये हर दिन हर एक्टिविटी के साथ नेचुरली बिल्ड होती है। क्लियर कॉन्सेप्ट्स, कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन और केयरिंग स्पेसेस जो बच्चों को स्कूल के लिए रेडी बनाते हैं। एडमिशंस अब ओपन है, सेशंस शुरू हो रहे हैं अप्रैल से। यूरो किड्स, द प्री स्कूल एक्सपर्ट, एनरोल नाउ।
3: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नू तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
4: पर की उस दे लई मेनू दिल्ली जाना पएगा?
3: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
4: अप्लाई किवें करिए?
3: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sei.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता ली 011-2311-2428 ते संपर्क करो।
4: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
5: जी असी वक् वक् सिलसिले अपने स्रोतियों लिए लैके आने जानकारी ते मनोरंजन नाल नाल। ते अगला सिलसिला जिदे वल वध रहे हैं जी, वह है उमरां दे पेंडे, जिदे विच अपने जीवन दे तजर्बियां दी इतनी महक जिहड़ी है साडे वड्डी उम्र दे साडे वडेरे साडे नाल सांझे करदे ने, साडे जीवन नू नौजवान वर्ग नू एक नवीं

0: हेलो
1: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
2: सावधान, अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: लो जी, गीत तो बाद और इस सुनेहे तो बाद एक बार फिर तो असी हाजिर हो गए हैं और नाल असी लैके आए अपना अगला सिलसिला। और देखो प्रीति, हर वार की तरह ना इस हफ्ते भी बहुत सारिया औरतों ने वक्ो वक्रे खेत्र खूब मल्ला मारिया ने और जिसकी जानकारी साढ़े नाल सांझी कर दी है हरप्रीत।
4: बिल्कुल जी, और सिलसिला रहा है जी सुरखियाँ। तो आओ सुनते हैं फिर अज का ये सिलसिला,
3: सुरखियाँ च औरत।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: After a detailed assessment,
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.5

0: 6% कर दिया है। उद्योग संगठन एसोचैम ने आरबीआई के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल कर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश है जी अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उना दा प्रसारण समां।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी तुहाड़ा। तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम फौजी वीरां लई। सुनते हाँ अज दे प्रोग्राम दा अगला गीत उदित नारायण दी आवाज़ विच।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: ते सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। वज़ीर आज़म हज़ीरा जाएंगे और सहपहर में एक बड़े जलसे आम से खिताब करने से पहले सनअती और बुनियादी ढांचे की जारी कार्रवाइयों का जायज़ा लेंगे। बाद में शाम को वज़ीर आज़म दमन का दौरा करेंगे, जहाँ वो कौम के लिए हिफ्ज़ान सेहत और हवाबाजी के बड़े बुनियादी ढांचे समेत दमन में तकरीबन 2,970 करोड़ रुपये मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और उनका संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा वो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लक्षद्वीप के लिए अहमियत के हामिल बहरी प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखेंगे। पेश है हमारे नामा निगार की रिपोर्ट।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल और जदीद नमो अस्पताल की इमारतों का इफ्तिताह करेंगे, जिससे इलाकाई फ़ज़ाई राबतों को इस्तेहकाम हासिल होगा और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इस इलाके में हिफ्ज़ान सेहत तक मज़ीद रसाई हासिल होगी। वो बुनियादी ढांचे के बहुत से अहम प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे, जिसमें आइकॉनिक ब्रिज, दमन कन्वेंशन सेंटर और निफ्ट कैंपस भी शामिल है। समुद्री तरक्की के लिए अहम कदम के तौर पर वज़ीर आज़म मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके लक्षद्वीप में बंदरगाह प्रोजेक्टों के लिए इजाफी तौर पर संग बुनियाद रखेंगे, जिनकी लागत 885 करोड़ रुपये है। इन प्रोजेक्टों से काला पानी और कदमत जजीरों की तरक्की में इजाफा होगा। मुसाफिरों और बहरी जहाज़ों की साल भर की आमदोरफ्त बढ़ेगी। इसके अलावा माही परवरी नीस कश्तियों की मरम्मत की सहूलियात में इजाफा होगा। सूरत से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे के सफ़र को काबिल तहसीन रफ्तार मिल रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बताया कि एयर ट्रंक ने भारत में तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का सरमाया लगाने और 5 गीगावाट वाले डेटा सेंटर तैयार करने के मंसूबों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क के डिजिटल बुनियादी ढांचे के इको निज़ाम में सरमायाकारी की सबसे बड़ी तजवीज़ है। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह की सरमायाकारी से क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई के लिए एक आलमी मरकज़ के तौर पर भारत की पोजीशन को इस्तेहकाम हासिल होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को उनके योम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए उनका काम काबिल सताइश है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज त्रिपुरा में लंकामुरा सरहदी चौकी पर सरहदी हिफाजती फोर्स के अमले से खिताब करते हुए सरहदी हिफाजत का एक जामे खाका पेश किया है। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर जनाब शाह ने कहा कि मरकजी मुसल्लह पुलिस दस्तों के माहौलियाती ताउन को उजागर किया। उन्होंने कहा कि 2019 में CAPF अमले ने तकरीबन 4,40,00,000 पौधे लगाए थे। वज़ीर दाखला ने सरहदी हिफाजत पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत त्रिपुरा, मगरबी बंगाल और बिहार के सरहदी इलाकों में गैर कानूनी आबादी में तब्दीली की रोकथाम की पाबंद है। उन्होंने बताया कि सरहद पर पुरानी बाड़ को हटाकर 119 किलोमीटर नई बाड़ की तामीर के लिए रकम की मंजूरी दे दी गई है।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी CAPF में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में CAPF के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: मरकज ने सरमाए पर हासिल होने वाले मुनाफे पर गैर मुल्की अदारा जाती सरमायाकारों और सरकारी तमस्सुकात में सरमायाकारी से होने वाली आमदनी में सूद पर टैक्स में छूट दी है। हुकूमत ने इस सिलसिले में इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 को नाफिज कर दिया है। ये छूट इस साल 1 अप्रैल से काबिले इतलाक होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौजूदा माली साल में लगातार दूसरी बार शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौजूदा माली साल के लिए दूसरी दोमाही माली पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि माली पॉलिसी कमेटी ने कम मुद्दत के कर्जे देने की शरह रेपो रेट को 5.25% की सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने मौजूदा माली साल में मजमूई अंदरून मुल्क पैदावार GDP की शरह तरक्की कम होकर 6.6% रहने का अंदाज़ा लगाया है, जबकि इससे पहले उसके 6.9% रहने की बात कही गई थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने मौजूदा माली साल के दौरान अशियाए सार्फीन की कीमतों के इशारे पर मबनी अफरात ज़र की शरह का निशाना

0: अब 5.1% कर दिया है, जबकि इससे पहले 4.6% रहने की बात कही गई थी। गवर्नर ने तरक्की में सुस्त रफ्तारी के अंदेशों के तौर पर आलमी सप्लाई चेन में देरी न रुकावटों, बैनुल अक्वामी माली मार्केट्स में गैर यकीनी सूरत हाल और मौसम से मुतालिक गैर यकीनी का जिक्र किया है। आरबीआई ने शेयर बाजारों में गैर रिहायशी भारतीयों, भारत के बैरून मुल्क आबाद शहरियों और बैरून मुल्क दीगर अहम सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के मौक़ों में भी इजाफा किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। के सदर नितिन नबीन ने तमिलनाडु में बीजेपी के चीफ के अन्नामलाई की तरफ से दिए गए पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा कबूल कर लिया है। हाल ही में अन्नामलाई ने बीजेपी के सदर को अपना इस्तीफा पेश किया था। 12वीं जमात के तलबा की तरफ से सीबीएसई के नतज के बाद की शिकायतों के अजाले के अमल के लिए 70,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इनमें 3,314 दरख्वास्तें नंबरों की तोसीक और दोबारा जांच के लिए 63,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें शामिल हैं। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल आज से भारत के 3 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर भारत का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के दौरान नेपाली वजीर खारजा नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि तरफ़ैन तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, तवानाई और आवाम से आवाम के रबतों समेत अहम शोबों में इश्तराक पर तबादले ख्याल करेंगे। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुर्रे अर्थ पर ज़िंदगी बचाने के लिए बेदारी पैदा करने की खातिर माहौलियात से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 1973 से हर साल 5 जून को यह दिन मनाया जाता है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता के हमराह आज माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क्स का इफ्तिताह किया। जापान में 18 साल की उम्र तक के मर्दों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में आज शाम भारत का सेमीफाइनल में मुकाबला रवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। ये मैच काका मीगा हारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक 3:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। मरकज ने सरकारी तमस्कात में एहसासों के फ़ायदों पर गैर मुल्की अदारा जाती सरमायाकारों को टैक्स में छूट दी है। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई तब्दीली ना करते हुए इसे 5.25% पर बरकरार रखा है। उसने जीडीपी से मुतालिक अपनी पेशगोई में शरह तरक्की को कम बताया है। इस माली साल के दौरान पहले ये पेशगोई 6.9% पर थी, अलबत्ता इसे कम करके अब 6.6% कर दिया गया है। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल आज भारत के 3 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुँचेंगे। आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हुकूमत ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का इफ्तिताह किया और जापान में मर्दों के 18 साल तक की उम्र के एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला उसके देरीना हरीफ पाकिस्तान से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: खबरों तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी। प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरां लई। सुनते हैं आज दे प्रोग्राम दा अगला गीत आदित्य रिखारी दी आवाज़

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे।

0: ये प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़

0: मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ ने जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2,00,00,000 से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
5: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं।
6: लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 2:03 हो रहे ने। हुण पेश है जी प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम विच आओ सुनदे हाँ सुरजीत कुमार दी आवाज़ विच ए लोक गाथा।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। शाम दे 4 बज रहे ने। साडी दूसरी सभा हुण शुरू हुंदी है। सभा दे शुरू विच आओ सुणदे हां हुण तक दे मुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज गुजरात अते दमन दे दौरे ते करीब 21,800 करोड़ तो वाधी लागत वाले कई विकास प्रोजेक्टां दी करनगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत दी डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा तेजी नाल वध रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्ती साल विच मुख व्याज दरां नूं बरकरार रख्या। रैपो दर नूं 5.25% ते बनाई रखण दा कीता फैसला। अज विश्व वातावरण दिवस मौके उपराष्ट्रपति अते प्रधानमंत्री वल्लों देशवासियां नूं वातावरण सुरक्षा पायदार जीवन शैली अते जीवन विभिन्नता दी संभाल प्रति अपनी वचनबद्धता नूं मजबूत करन दी अपील कीती। पंजाब दे राजपाल अते चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने देशव्यापी मुहिम एक पेड़ माँ के नाम तहत पंजाब लोक भवन विखे बूटे लगाउण दी मुहिम दी अगवाई कीती। पंजाब राज महिला कमिशन ने लुधियाना विच 9 कुड़ियां दे लापता होण दीआं रिपोर्टां दा अपने पद्धर ते नोटिस लिया। जांच दी 8 जून तक वेरवे समेत रिपोर्ट मंगी है। पंजाब पुलिस वल्लों विदेशी दहशतगर्दी समूह दे 2 साथियां नूं गिरफ्तार करन तो 1 दिन बाद अज 4 होर मुलजमां नूं 5 पिस्तौलां 1 किलो तो वध हैरोइन अते 5 लाख रुपए दे ड्रग मनी नाल काबू कीता। केंद्रीय सैकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड की 12वीं जमात के नतीजों के ऐलान तो बाद शिकायतों के हल लई 70,000 तो वध अर्जियां प्राप्त हुई ने। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ समेत होरना कई सूबों में गरज चमक के नाल हनेरी चलन बारे ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मर्दा के अंडर 18 एशिया कप हाकी टूरनामेंट के सैमीफाइनल अज भारत का मुकाबला जापान के काका मेघा

रंग रत्ता मेरा साहिब रव रहया परपूर। बाबा नानक जी दा ए फरमान बहु रंगी अकाल पुरख दी होंद ते उस दे सर्ब कला भरपूर होण दी शादी पर्दा है। रत्ता तो भाव एक सुर एक मिक होना जा होया मन्या जांदा है। तां ते फिर बहु रंगी प्रभु दे रंग विच ही अपने आप नूं रंगना मुनासिब होएगा। इस वास्ते प्रभु दे नाम दी आवश्यकता है। परमात्मा दे नाम दी प्राप्ति प्रभु प्यारे संत जना गुरमुख जना पासों ही हो सकती है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विचली बाणी विच प्रभु दे नाम दी महिमा बयान कीती गई है। साहिब श्री गुरु अमरदास जी द्वारा उचारी हुई रामकली राग विचली आनंद बाणी विच इसे नाम दी महिमा अते उसकी प्राप्ति का स्रोत बयान किया गया है। आनंद बाणी की तीजी पौड़ी विच साहिब श्री गुरु अमरदास जी फरमाउंदे ने, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा है, कर ता तेरा है सब किछ है, जिस देह सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै। सरवण करदे हां भाई गुरबचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे पासों इस

0: साचे साहेबा क्या नाही करते रह। इस पौड़ी का गायन किया सी भाई गुरबचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। प्रभु दे नाम दा रंग ऐसा पक्का रंग है जो सदीवी है। प्रभु दे नाम सदका ही मनुखा जन्म दी बाजी जीती जा सकती है। इसे गल दी प्रोड़ता साहिब श्री गुरु नानक देव जी आसा जी दी वार विच करदे हन। आप जी फरमाउंदे हन कि अकाल पुरख ने सृष्टि रच के नाल ही सृष्टि दे जीवां दा विशेष तौर ते उत्तम जीव मनुख दा लेखा जोखा करन दी जिम्मेवारी धर्मराज दी थाप दित्ती। प्रभु दे नाम विच रंगे हुए जीवां दा लेखा जोखा सौख्या ही निबड़ जांदा है, अर्थात ओ जीवन दी बाजी जित जांदे हन। तेरा नाए रत्ते से जिण गए, हार गए से ठगण वालिया, अर्थात नाम रंग विच रत्ते हुए प्राणी हर प्रकार दी निधि प्राप्त कर लेंदे हन। सुनदे हां प्रोफेसर अवतार सिंह होरा पासों वार्ता, पाईयन सब निधान तेरे रंग रत्या।
1: बाणी दी इस पावन तुक

नाम निधान अपार, पक्ता मन वसै, जन्म मरण मोह दुख, साधु संग नसै। इस शब्द का गायन कीता सी भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार मीडियम वेव 343 6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 854 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ही जलंधर केंद्र है। तुसीं साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राहीं भी सुन सकते हो। इस वेले शाम दे 6 बज रहे ने। हुण तुसीं सुणोगे हिंदी च समाचार साडे दिल्ली केंद्र तों।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता

की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपुरती ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 854 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स से DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। तो लो हुण पेश है अज दे प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां।

0: फोन नंबर है 0181-298-3036, ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: आओ हुण सुणदे हां आकाशवाणी दा गीत।

0: घर खर्चे दे पैसे दियो हस्बैंड जी।
1: ए राशन दे 15,000, सब्जियां दे 2,000
0: ते बिजली दे बिल दे
1: हुन 0 रुपए की मैं दवा।
0: ओहो भुली गई सी, हुन ता सोलर पैनल लग गए है ना, ता फिर जो बाकी बचे हुए 4,000 ने उसदी शॉपिंग करन चलिए।
1: जरूर, पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है, हुण तुसी जगजीवन सिंह तो प्रादेशिक खबरां सुनो। सब तो पहला अज दियां खास खबरां। अज विश्व वातावरण दिवस मौके उपराष्ट्रपति अते प्रधानमंत्री वल्लों देशवासियां नूं वातावरण सुरक्षा, पायदार जीवन शैली अते जैव विविधता की संभाल प्रति अपनी वचनबद्धता नूं मजबूत करन की अपील। पंजाब दे राजपाल गुलाब चंद कटारिया ने देशव्यापी मुहिम एक पेड़ माँ के नाम तहत चंडीगढ़ विखे बूटे लगाने की मुहिम की अगाई की। राजसभा मैंबर संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने जलंधर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो सोधे हुए पानी नाल सिंचाई करन संबंधी प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। पंजाब राज महिला कमिशन ने लुधियाना में 9 कुड़ियों के लापता होने की रिपोर्टों का अपने पद्धर से नोटिस लिया। पुलिस तो 8 जून तक सर्वे रिपोर्ट मंगी। सीबीआई की मोहाली अदालत ने करोड़ों के बैंक घोटाले मामले में एक व्यक्ति को 3 साल की सख्त कैद की सज़ा सुनाई है। अमृतसर पठानकोट कौमी शाहरा से अज सवेरे वापरे एक सड़क हादसे में एको परिवार के 2 व्यक्तियों की मौत और 14 जख्मी। ते हुण खबरां विस्थार दे नाल। अज विश्व वातावरण दिवस है। यह दिन 1973 तो संयुक्त राष्ट्र वातावरण प्रोग्राम तहत धरती से जीवन बचाने बारे जागरूकता पैदा करने लिए हर साल 5 जून को मनाया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्ण ने हरेक नागरिक को आने वाली पीढ़ियों लिए स्वच्छ सेहतमंद और खुशहाल भविष्य बनाने लिए इकट्ठे होकर काम करने का सद्दा दिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वातावरण दिवस से राष्ट्र को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम वर्गियां पहलकदमियों ने हर साल लगभग 1,19,000 हैक्टेयर जंगलात कवर जोड़न विच अहम योगदान पाया है। केंद्रीय मंत्री जंगलात ते जलवायु प्रबंधन मंत्री भुपेंद्र यादव ने देशवासियों नूं जलवायु अते भविख लई कुदरत तों प्रेरणा लैंदे रहण दे अपने संकल्प नूं दोहराण दी अपील कीती है। इधर अज पंजाब दे राजपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब लोक भवन विच बूटे लाउण दी मुहिम की अगवाई की। यह पहल देशव्यापी मुहिम एक पेड़ माँ के नाम तहत की गई सी। इस मौके संबोधन करदिया श्री कटारिया ने कहा कि वातावरण की सुरक्षा सांझी जिम्मेदारी है। उन्होंने नागरिकां खासकर नौजवान पीढ़ी को बूटे लगाने लिए संभाल नाल संबंधित सरगर्मियों में हिस्सेदारी का सद्दा दिता है। विश्व वातावरण दिवस के मौके पर श्री सीमा सुरक्षा बल 109वीं बटालियन ने माधोपुर में एक विशेष समागम का आयोजन किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारू चक ने मुख्य मेहमान वजों शिरकत की और बटालियन के अहाते एक रुख लाया। समागम दौरान कैबिनेट मंत्री कटारू चक ने कहा,
4: वातावरण शुद्ध रहे ए मैं समझा भी हर भारतीय नागरिक की एक जिम्मेवारी हैगी है। सो मैनू बहुत अज खुशी महसूस हुई है कि असि अज माधोपुर विखे BSF की 109 बटालियन च आने का मौका मिलिया। इथे प्लांटेशन नू शुरुआत की गई है। सो BSF की इस बटालियन ने 5,000 बूटे लाने का टारगेट मिथ्या पूरे जिले के अंदर। सो तमाम लोगों को बेनती है कि आज का दिन कला एक समोलक नहीं है बल्कि जिंदगी के अंदर वातावरण साफ रखने के लिए सानू कोशिशां जारी रखनिया चाहिए ने, सानू जतन करने चाहिए।
3: पंजाब के विज्ञान टेक्नोलॉजी

0: उन तक बनाए गए सारे प्लास्टिक की गल करिए 91% रीसाइकल नहीं होया, जो ना सिर्फ साढ़े जीवन काल की सब तो वड्डी वातावरण समस्या विचों एक नूं दर्शाउंदा है, बल्कि एक होर वड्डी मार्केट असफलता नूं दर्शाउंदा है।
1: नो डाउट ये बड़ा वर्तन च अच्छा लगता है, इहदा रीसाइकलेबल जिहड़ा इहनूं करना बहुत औखा है, इहनां नूं नॉन डिग्रेडेबल किया जांदा है। नो डाउट किसी की 5 to 10 साल है, किसी की 100 साल तक भी डिग्रेडेशन नहीं होंदी। कई तो जिवें पॉलीविनाइल क्लोराइड है, वह कभी भी डिग्रेड नहीं होंदा, इस पिछे उहदियां पाइपां पूइपां ज़्यादा वर्तन दे विच आउंदी। और इहदे तों कई इहो जिहे हार्मफुल प्रोडक्ट्स और निकलते हैं जिड़ी कि साड़ी हैल्थ नू और सिस्टम नू एनवायरमेंट नू खराब करते हैं। ये सुट दें असी वरत के और इनू असी यूज एंड थ्रो कैटागरी च लै आने या सिंगल यूज लै आने या बोतल है, और तुसी देखिया भी ये इन्ने प्रोडक्ट ने, और थर्मोकोल भी इसे कैटागरी च आ जाता है पॉलीस्टरीन की कैटागरी के, और एक सुभाव बना लिया भी असी बर्तन भांडे टींडे हर चीज़ वे वरतते हैं, तो वह जदों क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो कूड़े दे विच मिक्स हो जाती है और ये लाइट वेट होंदी है, फिर फैल जाती है चारों पासे। सो तुसीं देखिया भी जिथे जिथे दूर दूर दूर तक कहण नूं ते असीं रीसाइकल कर सकते हैं इहनूं, पर रीसाइकल प्रैक्टिकली हुंदा नहीं है, और वह जा जा के फिर साडे सीवरेज सिस्टम च साडी नालियां च साडे जिहड़ा पानी दे जिहड़े झरने ने स्त्रोत्र ने उहनां दे विच वड़ना शुरू हो जाता है, और जिहड़ा एक सीवरेज सिस्टम असीं बनाया हुंदा है उहनां नूं भी वह ब्लॉक करना शुरू कर दिंदा है।
0: प्लास्टिक नूं सड़न विच 400 साल लग जांदे ने, एसी होंद खत्म होण तक इस नूं कई पीढ़ियां लग जाणगियां। लंबे समय तो असी जो प्लास्टिक प्रदूषण कर रहे हां, वातावरण कित्थे जाएगा? जिन्ना भी प्लास्टिक सड़कां ते सुट्टिया जांदा है साडे वल्लों, पशुआं दीआं आंतड़ियां विच जांदा है, फिर पशु उस नूं खा के बीमार हुंदे ने। ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ? ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ 7 ਹੱਦਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਨ ਵਿਗੜਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਭੂਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਉਸਦਾ ਖੂਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ, ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ।

वैसे असीं सारे कोशिश कर रहे हैं धरती नूं बचाउण दी, किवें इस नूं सांभिया जावे। वातावरण दा जिहड़ा सब तों प्रभाव है पैंदा है साडे मन ते, मन दी ऊर्जा ते। साडी सोच दा असर पाणी ते, हवा, रुखां ते, पौद्यां ते, पंछियां ते, पशुआं ते वी पैंदा है। जेकर साडी सोच चंगी नहीं होएगी तो आप नदियों नूं किन्ना ही साफ क्यों ना कर लईए, असी पानी दी वाइब्रेशन नूं बदल नहीं पावांगे। उहदे लई सानूं बाहर भी साफ करना होएगा। आपां सभनां दे लई बहुत ही विशेष है वातावरण नूं बचाउणा, वातावरण नूं बचाउण दी, क्योंकि इस नाल साडियां भावनावां, फीलिंग्स, शरीर, रिश्ते सब कुछ जुड़िया होया है। साडी सोच भी वातावरण वांग साफ हो सकती है। जेकर वातावरण साफ होएगा तो ही साडे मन विच कुदरत नूं बचाउण दा ये जिहड़ा सपना है असी पूरा कर पा

0: नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन बेहतर होगा। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार।
0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।

0: was targeted to achieve results in 5 years. We have been able to get very satisfactory performance in the first 3 years itself. So probably there is a case to expand it further. And there have been other schemes like RAMP scheme sponsored by the World Bank, where again, you know, we have been able to have very good engagement with all the state governments through their strategic investment plans for the growth of this MSME ecosystem. And probably there's a case on supplementing that scheme with another revamped version of the scheme. And recently, government came out with this emergency credit line guarantee scheme, which is a big relief to the MSME ecosystem in the current times because of geopolitical tensions they were facing in West Asia. And similar scheme had been brought out by the government during COVID, and it had brought very positive results. So that is the reason why it was thought that this is the right time. Particularly the micro and small enterprises were facing working capital stress issues, and this scheme has come as a big relief and respite.
1: अब चैलेंजेस की बात करते हैं, बिकॉज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, वी नो व्हाट्स हैपनिंग विद द यूएस ईरान वॉर इज वेल, एंड दैट्स रियली चोक्ड योर सप्लाई चेन. अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स फॉर इंस्टेंस. तो हाउ डू यू काउंसल एमएसएमईज व्हेन दे आर फेसिंग, दे आर एट द डीप एंड एंड दे आर एट द रिसीविंग एंड, और व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड ओवर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नो direct control. They are trying to alleviate the pain, but they don't have any direct say in what's going on.
0: I would say from this perspective, our industry is quite resilient. So they have been able to withstand these kind of negative externalities in the past also, and they have been able to do so in the recent crisis times. So whether it is supply and pricing of raw material, whether it was energy availability, resources availability, so probably our industries have seen it as an opportunity to also transform. I would give you an example of this Morbi cluster in Gujarat, where you have the tile industry located. So they were quite a lot of dependent on gas. And when the supply got disrupted, they thought that this is the time when we can perhaps move towards piped natural gas. And they moved from propane to piped natural gas. Crisis is also a time for opportunity. So that is where our industry has shown good promise.
1: Just your take on artificial intelligence and semiconductor units, because it has now been set up in a big way. Where do you see MSMEs playing a role?
0: You are right. AI is going to penetrate into every sector, every segment of our life. So manufacturing cannot be left behind, services cannot be left behind. And no doubt there could be a difference in the level of sophistication or level of up to which AI can be adopted in micro, small, and medium enterprise. However, MSMEs are also now being fully prepared to adopt AI, to use AI. We have these technology centers, which I mentioned about all over the country. We have tried to propagate AI and Industry 4.0 tools to the youngsters through training provided in these measures. Plus, we are also wanting to incentivize enterprises who adopt AI tools. So we have a scheme called MSME Innovative Scheme, in which we were earlier, you know, focused on incentivizing the enterprises for good quality standards. We had the Z scheme for competitiveness, for which we had the Lean scheme. We were having incubations done for the startups. That was the third component of the scheme. We were encouraging them for filing intellectual property rights. That was the fourth component of the scheme. We were pushing them towards greening and sustainable manufacturing, which was other component of the scheme. So we have now added AI also to that, so that MSMEs are not left behind in this new technology.
1: Bharat Kheda ji, thank you so much for being with us. We have unfortunately run out of time, but the discussion can be endless. That is the scope of the micro, small, and medium enterprises. Thank you so much for being with us.
0: Thank you.
2: In the special series, 12 Years of the Modi Government, you were listening to an exclusive interview with Bharat Kheda, Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, on major reforms and initiatives for the growth and empowerment of MSMEs. Interviewer was Arjun J. Chaudhary. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे थे अर्जुन जी चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज से डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ये जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लो इस वेले 7:45 हो रहे हैं। लो हुण पेश है प्रोग्राम सब रंग। सामाइन की खिदमत में मेरा आदाब, मैं आबिद अली खान अपना अफसाना एक ज़ख्म और सही लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको यह अफसाना ज़रूर पसंद आएगा। एक ज़ख्म और सही। जैसे ही मैंने अपने दोस्त सुरेश के साथ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कदम रखा, एक साइकिल रक्षा वाले बूढ़े शख्स ने हमारे आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया। वो बार बार एक ही बात पूछ रहा था, बाबूजी आपको कहाँ जाना है? बाहर मेरी रक्षा खड़ी है, बोलिए कौन से होटल में ले चलूं? हम लोग उसकी बातों पर तवज्जो दिए बगैर चुपचाप आगे बढ़ते रहे। उस रक्षा वाले की आंखों में एक अजीब किस्म की बेचैनी थी, वो किसी भी तरह हमें छोड़ना नहीं चाहता था। सुरेश ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, बाबा तुम तो पीछे ही पड़ गए, हमें कहीं नहीं जाना। मगर रक्षा वाले ने भी हिम्मत नहीं हारी, उसने बड़ी आजिज़ी से एक बार फिर अपना सवाल रख दिया। इस बार उसकी आंखों में एक इल्तजा थी, मैंने इसे मायूस का नाम मुनासिब न समझा और उससे पूछ लिया, देखो अभी हमें होटल वगैरह में नहीं जाना, हमें सदर बाज़ार से कुछ सामान ख़रीदना है, इसके बाद शहर की कई दूसरी मार्केटों में जाएंगे। हमें ये बताओ कि दिन भर तुम हमें लेकर चलोगे तो कितने पैसे लोगे? मेरा सवाल सुनते ही रक्षा वाला कुछ देर के लिए गहरी सोच में पड़ गया। दरअसल हमारा दिल्ली आने का मकसद घूमना फिरना या यहाँ ठहरना नहीं था, बल्कि सुरेश को अपने किसी ज़ाती काम से दिल्ली आना था, उसके साथ मेरा भी मूड बन गया। यहाँ आकर हम लोग नहीं चाहते थे कि हमारा ज़्यादा वक्त बर्बाद हो, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि अगर एक ही रक्षा दिन भर के लिए कर लिया जाए और उस पर बैठकर हम लोग दिल्ली के बाज़ारों में घूम भी लेंगे और शॉपिंग वगैरह भी कर लेंगे। इतने में रक्षा वाला बोला, बाबूजी आप लोग दिन भर के लिए रक्षा बुक करेंगे तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। 200 रुपये सुनते ही सुरेश का पारा चढ़ गया, उसने रक्षा वाले के साथ बहस करना शुरू कर दी। वो नहीं चाहता था कि 100 रुपये से ज़्यादा किसी भी रक्षा वाले को दिए जाएं। उसने फ़ौरन रक्षा की बजाय लोकल बस में पुरानी दिल्ली तक जाने का फैसला किया। दूसरी तरफ रक्षा वाले की कोशिश थी कि किसी तरह उसके हाथ से हम ना निकलें। आखिर काफ़ी बहस के बाद और मेरे इसरार करने पर सुरेश 150 रुपये पर राज़ी हो गया। मुझे ना जाने क्यों इस रक्षा वाले से हमदर्दी हो चली थी। जैसे ही हम लोग उसके रक्षा में सवार हुए, उसके मुर्दा चेहरे पर चमक आ गई। वो फुर्ती से रक्षा पर सवार होकर बोला, बोलिए बाबूजी आप लोग पहले कहाँ चलेंगे? हम लोगों ने सदर बाज़ार जाने का फैसला किया और कुछ ही देर में हम रक्षा में सवार होकर रेलवे स्टेशन पुरानी दिल्ली की तरफ चलने लगे। वो फटे पुराने और मैले कुचैले कपड़े पहने मातमजदा ज़िंदगी की नुमाइंदगी कर रहा था। हमारी रक्षा धीरे धीरे दिल्ली के मुख्तलिफ बाज़ारों और गलियों से निकलती हुई सदर बाज़ार तक पहुँच गई। सदर में पहुंचकर हमने उस ऑफिस के नीचे रक्षा खड़ी कर ली जहां पर सुरेश को जाना था। मैंने फैसला किया कि सुरेश ऑफिस चला जाएगा और मैं जब तक इस रक्षा में बैठकर उसका इंतज़ार करता रहूंगा। सुरेश के जाने के बाद मैं बाज़ार में दुकानों के इर्द गिर्द रौनक और चहल पहल से लुत्फानंदोज़ होने लगा। बहुत सी दुकानों के शोकेसों के पीछे मसनूई औरतों के जिसम पर बेइंतहा खूबसूरत लिबास और जेवरात देकर दिल चाहता था कि मैं कुछ ना कुछ यहाँ से ख़रीद लूँ, मगर मैं खामोशी के साथ उन्हें तकता रहा। रक्षा वाला न जाने किन ख्यालों में गुम बाज़ार की रौनकों से बेजार नज़र आ रहा था। मैंने वक्त गुजारने के लिए उससे सवाल किया, तुम इतनी उम्र में भी रक्षा खींचते हो, क्या कोई लड़का नहीं जो तुम्हारा खर्चा उठा सके? मेरा सवाल सुनते ही वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर दबी हुई आवाज़ में बोला, बाबूजी क्या करें, पेट भरने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। एक जवान लड़का था जो किसी एक्सीडेंट में अपाहज हो गया। इससे पहले मेरी बीवी टीवी की बीमारी से मर गई। अब क्या बताएं, ये सब किस्मत के खेल हैं। मैं उसकी बातें सुनकर चौंक पड़ा, मगर वो मुस्कुराता रहा जैसे वो अपनी बातें नहीं किसी फिल्म की कहानी सुना रहा हो। मुझे उसकी मुस्कुराहट में एक तंज की झलक दिखाई दी। मुझे लगा जैसे वो अपनी बर्बादी पर मुस्कुरा रहा हो। मैंने अपना और उसका ध्यान बदलने के लिए सवाल किया, क्या ये साइकिल रक्षा तुम्हारी अपनी है? नहीं बाबूजी, ये भी किराए पर ली है जिसका हर रोज़ किराया देना पड़ता है। गांव से शहर

ये सोच कर आया था कि यहाँ आकर ज़िंदगी संवर जाएगी, जबकि यहाँ पर तो मुसीबतें और भी बढ़ गई हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे उससे हमदर्दी होने लगी। अभी मैं उससे बातें करने में मसरूफ़ था कि सुरेश अपना काम निपटा कर आ चुका था। सुरेश के आते ही हमारी रक्षा चांदनी चौक की तरफ चल पड़ी, जहाँ से मुझे अपनी बेगम के लिए सैंडल ख़रीदने थे। बेगम साहिबा ने चलते चलते कई बार ताकीद की थी कि कुछ भी हो, उसके लिए खूबसूरत सैंडल ज़रूर आने चाहिए। सुरेश का भी कुछ चीज़ें ख़रीदने का इरादा था। चांदनी चौक में कदम रखते ही हमारी सांसें फूलने लगीं। बाजार की चमक दमक और चहल पहल हमें अपनी तरफ खींचने लगी। हमारी रक्षा जैसे जैसे आगे

0: चलते चलते कई बार ताकीद की थी कि कुछ भी हो उसके लिए खूबसूरत सैंडल ज़रूर आने चाहिए। सुरेश का भी कुछ चीज़ें खरीदने का इरादा था। चांदनी चौक में कदम रखते ही हमारी सांसें फूलने लगीं। बाजार की चमक दमक और चहल पहल हमें अपनी तरफ खींचने लगी। हमारी रक्षा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, मैं खामोशी से दुकानों और शोकेसों पर नज़र डालता जा रहा था। कहीं कपड़ों की सेल थी, कहीं पर्स बिक रहे थे, कहीं पर परफ्यूम्स के शानदार शोरूम थे। बहुत सी दुकानों पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत पोस्टर लगे थे, जिनमें ज़्यादातर हसीन औरतों की तस्वीरें थीं, जो नए नए फैशनों का इश्तहार बनी हुई थीं और ग्राहकों को बुला रही थीं कि आओ हमारे जैसे लिबास पहनकर तुम भी हमारी तरह बन जाओ। इस तरह एक शोकेस में एक मसनूई दोशीज़ा खूबसूरत अस्कर्ट की नुमाइश कर रही थी। तभी मेरी नज़र एक जूतों की दुकान पर पड़ी, जिस पर लगे पोस्टर में एक बे इंतहा खूबसूरत हसीना सैंडल पहने स्टूल पर बैठी थी और एक हैंडसम लड़का झुककर उसके सैंडल का तस्मा बांध रहा था। हमने रक्षा वहीं रोक ली और जूतों की दुकान में जा घुसे। वहाँ एक से बढ़कर एक फैशनेबल सैंडल थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लूँ और कौन सा छोड़ूँ। अगर बेगम मेरे साथ होती तो एक की बजाय कई जोड़ी जूते खरीदती। मैंने दो जोड़ी सैंडल पर दिल को समझा लिया। सुरेश ने भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खूबसूरत गोल्ड की घड़ी खरीदी। इसके बाद सुरेश और मैं शाम तक चांदनी चौक की दुकानों में घूमते रहे। हम जहाँ भी गए कुछ ना कुछ खरीदे बगैर न रह सके। शाम होने तक रक्षा हमारे सामान से भर चुकी थी। हमने बहुत सी चीज़ें खरीदी। बहुत सी चीज़ें देखकर दिल में आइंदा लेने की तमन्ना जाग उठी। इस तरह घूमते घूमते शाम हो चुकी थी। शाम होते ही हमें रेलवे स्टेशन जाने की जल्दी थी। हमें भूख भी लग रही थी। दिन भर शॉपिंग करते हुए हमें भूख का ख्याल भी नहीं आया था। न जाने रक्षा वाले ने कुछ खाया भी था कि नहीं। वो भी अब वापस जाना चाहता था, इसलिए हमारे रक्षा में सवार होते ही वो अपनी ख़ारिश ज़्यादा टांगों से रक्षा तेज़ तेज़ चला रहा था। आखिर हम रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। सुरेश ने जल्दी से अपनी जेब में से 200 रुपये निकाल कर रक्षा वाले के हाथ पर रख दिए, जो अपने मैले रुमाल से माथे का पसीना साफ कर रहा था। हमारी ट्रेन का वक्त हो चुका था। हम जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए कुछ ही देर में अपनी ट्रेन तक पहुंच चुके थे। खुशकिस्मती से हमें जाते ही सीट मिल गई। ट्रेन के चलने से पहले ही स्टेशन पर खाने पीने का सामान ले चुके थे। जब तक ट्रेन चली हम सभी चीज़ें लेकर सवार हो गए थे। खाना खाते हुए मेरे जहन में एक बार फिर बूढ़े रक्षा वाले की कहानी उभरने लगी। मैंने सुरेश से रक्षा वाले की बात की तो बिगड़ कर बोला, यार छोड़ो भी ऐसे फजूल लोगों की बातें। अगर जवानी में हमने इन चीज़ों के मुतल्लिक सोचना शुरू कर दिया तो कोई बीमारी लग जाएगी। ये लोग बड़े तेज़ होते हैं। देखा कैसे 200 रुपये से कम नहीं मांग रहा था। मैं भी उससे कम नहीं हूँ, अपने आप को ज़्यादा चालाक समझता था। मैंने उसे 100 का नोट जाली दे दिया, जो कहीं चल ही नहीं रहा था। सुरेश के मुँह से ये अल्फाज सुनते ही मेरी आँखों के सामने बूढ़े रक्षा वाले की सूरत घूम गई। मुझे लगा जैसे वो मेरे सामने खड़ा अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहा हो और कह रहा हो, बाबू एक ही लड़का है, वो भी अपाहज हो गया है। अब यही रक्षा चलाकर मैं अपना और उसका पेट पालता हूँ। इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा सहारा नहीं है। उसका कहा एक एक लफ्ज़ मेरे दिल पर ज़र्ब लगाता रहा। काश मुझे सुरेश की इस हरकत का उस वक्त पता चलता तो मैं उस रक्षा वाले के साथ ऐसी ज़्यादती ना होने देता। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? क्या वो मुझे कभी मिल पाएगा या नहीं? ऐसे ही बेशुमार सवालात मेरे जहन में उठते रहे। मैंने घबरा कर आँखें बंद कर लीं। उस जाली नोट की हकीकत जानने के बाद वो मेरे बारे में क्या सोचेगा और गुस्से में क्या कहेगा? फिर अचानक मेरे दिल ने कहा, जहाँ उस बूढ़े रक्षा वाले ने ज़िंदगी में बेशुमार गम उठाए हैं, इतने ज़ख्म सहे हैं, एक ज़ख्म और सही।
1: हुण तुसीं सुन रहे सी सब रंगच अफसाना, एक ज़ख्म और सही अफसाना निगार। सुन रहे सी डॉक्टर आबिद अली खान हुणा कोलों। लो हुण पेश है समात फरमाने चंद गज़लां।

जी हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम दे पहले गीत वालों थानू आकाशवाणी ने भी न्योता देता होया कि आजो हुण प्रोग्राम च जुड़िए ते सोहणिया सोहणिया गल्लां सोहणे सोहणे गीत सुनिए। जी हाँ, जिंदगी जीना और जिंदगी नूं हसीन बनाउणा इह साडे हत्थ च हुंदा है, क्योंकि गल सिर्फ सोच दी है। जे असी अक्सर वड्डियां कामयाबियां दे पिछे दौड़दे हुए उन्हां छोटियां खुशियां नूं भुल जांदे आ ना जो साढ़े आले दुआले हर रोज़ बिखरियां होंदियां ने। कदी भी तुसी नोट करना, जिंदगी दे विच असी दुनिया की दौड़ दे विच शायद असी पैसा कमाना हुंदा या होर सारियां चीज़ां, असी आले दुआले दियां छोटियां छोटियां चीज़ां जिहड़ियां सानू बहुत खुशियां दिंदियां ने उन्हूं भुल जांदे आ। जिवें सवेर की ताज़ा हवा, चाह की पहली चुपकी, तुहानू पता है जिहड़ी छोटियां छोटियां गल्लां ने, मापियां दियां दुआवां, दोस्तां दियां हासियां खेडियां अते अपने प्यारियां दा साथ, इह सब जिंदगी दे ओह रंग हन जो जिंदगी नूं हसीन बनाउंदे ने। कई वार मुश्किलां भी आउंदियां ने, बहुत मुश्किलां आउंदियां ने, पर इह मुश्किलां सानूं मजबूत बनाउंदियां हन। जिवें सोना अग विच तप के ही निखरदा है, उसे तरह इंसान भी हालातों विच लंघ के ही होर निखर जांदा है। इना इस कॉन्टेंट के उत्ते मैं कुछ गल्लां याद आईया, शायरी तौर पर आपां तुहाडे सामने प्रेजेंट करते हैं, तुहानू सुणाउंदे हां। कहिंदे कि मुश्किलां तो ना घबराओ, मुश्किलां तो ना घबराइए, ये तो मंजिल का राह दिखाउंदियां ने, हनेरे कदे सदा नहीं रहिंदे, उम्मीदां दी सवेर जरूर लियाउंदियां ने। जी हाँ, इदां दी सोच रख के जदों असी जिंदगी जिउणी शुरू करते हैं तो सानू किसी भी चीज़ की चिंता करन दी जरूरत नहीं है। सो आओ आनंद माणदे हैं जी इस गीत दा, प्रोग्राम जिंदगी हसीन।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही गल है जी। तुसी हुण गीत सुन रहे सी, रुक जाना नहीं, इन्ना सकारात्मकता नाल भरिया होया गीत। सानू इस तों प्रेरणा लेनी चाहिए है। जी हाँ, क्योंकि जे असी जिंदगी हसीन बनानी है, सानू अपने लिए टाइम कढ़ना पैना है। जिद्दां मर्जी होवे, सानू अपने लिए टाइम कढ़ना ही पैना है। क्योंकि अज दी भज दौड़ वाली जिंदगी दे विच असी अपने आप नू भुल जाने हैं। थोड़ा समा अपने लिए भी कढ़ो, किताब पढ़ो, संगीत सुनो, सैर करो, जां कुदरत दे नेड़े कुछ पल बिताओ, पर खुद लई टाइम जरूर कढ़ो जिहदे विच कोई ना होवे, सिर्फ तुसी ते सिर्फ तुसी। तुहाडे नाल आपस दे विच ही कोई है जिहदे नाल तुसी गल्लां करी जाओ, पर करो जरूर, खुद लई टाइम कढ़ो, किताब पढ़ो, संगीत सुनो, सैर करो, जो भी थानू चंगा लगता है। जे थानू पेंटिंग करना चंगा लगता है, अपने कमरे की दीवार नु सजाना चंगा लगता, तुसी दीवार सजा सकते हो, जो भी थानू चंगा लगता है। ता ही तुहाडा मन शांत होएगा, ते जदों मन शांत हुंदा है तां जिंदगी दी खूबसूरती होर भी साफ नज़र आउंदी है। क्योंकि खुश रहने लई सब कुछ होना जरूरी नहीं, सगों जो कुछ है उसकी कदर करना जरूरी है। जी हाँ, जिंदगी हसीन है प्रोग्राम दे विच असी एक होर मैसेज, एक होर संदेश अपने झोली पाउणा है कि जे असी जिंदगी हसीन है बनाउणी है, तां सानू पहला सबर ते अपने आप नाल यारी पाउणी पैणी है। जी हाँ, इस दे नाल ही इस प्रोग्राम दा अगला गीत तुहाडे सामने पेश है। आनंद माणो जी इस गीत दा।

दोस्तों, जिंदगी एक किताब वांग है जिसका हर पन्ना एक नवी कहानी सुनाउंदा है। कदे खुशियां, कदे चुनौतियां, पर हर तजुर्बा सानू कुछ नवा सिखांदा है। सिखा के चला जांदा है पर सानू अकल सिखा जांदा है। सो चलो, अज जिस तरीके दे नाल, जिस जोश दे नाल असी मुलाकात की और अखीर दे विच बहुत ज़्यादा समा तो हुण सानू इजाजत दिंदा नहीं है इस प्रोग्राम नू करन दा, पर अखीर दे विच तुहाडे सामने पेश कर रहा वां ये गीत सुन के तुहानू बहुत मज़ा आएगा। आनंद माणो जी इस गीत दा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने

0: देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच

0: से संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further.

खेतरी मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। राज्यसभा मैंबर संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने जलंधर विच सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट दे सौदे हुए पानी नाल सिंचाई करन संबंधी प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्तीय साल विच मुख व्याज दरां नूं बरकरार रखिया। रेपो दर नूं 5.25% ने बनाई रखण दा कीता फैसला। पंजाब राज महिला कमिश्नर ने लुधियाने विच 9 कुड़ियां दे लापता होण दीआं रिपोर्टां दा अपने पद्धर ते नोटिस लिया। पुलिस तो जांच दी 8 जून तक वेरवे समेत रिपोर्ट मंगी। सीबीआई दी मोहाली अदालत ने करोड़ां दे बैंक धोखाधड़ी मामले विच एक व्यक्ति नूं 3 साल दी सख्त कैद दी सज़ा सुनाई। पंजाब पुलिस वल्लों विदेश दहशतगर्दी समूह दे 2 स्थाईआं नूं गिरफ्तार करन तो 1 दिन बाद अज 4 होर मुलजमां नूं 5 पिस्तौलां 1 किलो तो वध हीरोइन अते 5 लख रुपए दे ड्रग मनी नाल काबू कीता। पंजाब च अमृतसर पठानकोट कौमी शाहरा ते अज सवेरे वापरे एक सड़क हादसे विच ईको परिवार दे 2 व्यक्तियां दी मौत 14 जख्मी। अते नार्वे शतरंज दे 9वें दौर विच प्रगे आनंद रमेश बाबू ने भारत दे ही विश्व चैंपियन डी गुकेश नूं हरा के अपनी किताबी दायबंदी बरकरार रखी। सो ये सन अज दियां मुख खबरां। ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। लो आओ हुण पेश है प्रोग्राम सुर छनकार।

प्यार, प्यार एक वो एहसास है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जाता है। ये दिलों को जोड़ता है, रूहों को सुकून देता है, तो जिंदगी को नवे रंगों नाल भर देता है। प्यार सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं, सगो उसकी खुशी विच अपनी खुशी लभण का नाम है। यह मिठी जिही मुस्कान है जो किसी खास के ख्याल नाल चेहरे पर आ जाती है। दोस्तों, आज दे इस खूबसूरत सफर विच असी गल्लां करांगे उस अनमोल जज्बे की, जो हर दिल विच वसदा है, प्यार का एहसास। तो बने रहो इस तरह, अपना प्यार दिंदे रहो आकाशवाणी नूं, और इस माध्यम राही तुसी सोहने सोहने गीत इस प्रोग्राम दे विच सुनते रहो। और इस दे नाल ही अगला गीत थोड़े सामने पेश करते हैं।

0: शाम की करारी चाय लबों से यूं चुराओगे।
1: जी किसी ने बहुत कमाल किया है, कहता कि प्यार किसी नू बदलन दा नहीं सगो उसनू उसे तरह कबूल करन दा ना है। दिल दियां तड़कना जदों किसी दे नाल जुड़ जांदियां ने ना, उही प्यार दा असली एहसास हुंदा है। प्यार जिंदगी दा ओ सूर, प्यार जिंदगी दा एक ओ सूर है जो हर रिश्ते नू मिठास नाल भर दिंदा है। कुछ लोग साड़ी जिंदगी विच आके इन्ने खास बन जांदे हन कि उन्हां दा जिक्र ही मुस्कान ले आउंदा है। प्यार दूरियां नाल नहीं, प्यार दूरियां नाल नहीं कटदा, सगो भरोसे नाल होर मजबूत हुंदा है। सो इदां दियां बहुत सारियां लाइनां ने, बहुत सारियां शायरियां ने, बहुत सारियां कवितावां ने प्यार दे उत्ते, जिन्हां ने लोकां ने अपने अपने अंदाज दे नाल बयां कीता। प्रोग्राम सरगम दे विच असी बहुत सारे सुकून वाले गाने सुने, आओ इस तरह अगले गीत वल थानू लै चलदे हां। आनंद माणो जी इस गीत का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा

में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अगर तुम इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हो, अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हो, गल्लां बातें करनी चाहते हो, तो फटाफट एक नंबर मिलाओ जी 0181 23 41 171, और तुम अपनी पसंद अपना मैसेज सानू व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो 94 655 36 077।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਸੁਗਾਤ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ
1: ਹੈਲੋ
0: ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਗਾਤ ਮੇਂ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਤਾਈਏ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਂ?
1: ਸਰ ਮੈਂ ਕਾਂਤਾ ਬਰਮਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਗਾਉਂ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਕਸੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਲਨ ਮਦਦ।
0: ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਗਾਤ ਮੇਂ। ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਆਪਕੇ?
1: ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
0: जी। आप हमारे प्रोग्राम रेगुलर सुनते हैं?
1: बिल्कुल सुनते हैं जी, हम जी सारे प्रोग्राम।
0: आपको दिन में भी मौका मिलता है प्रोग्राम सुनने का, सिर्फ रात को सुन पाते हैं?
1: दिन में तो सभी आने बाद में जी।
0: जी जी जी जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? आज कौन सा? आज आपकी कॉल लगी, बहुत खुशी की बात है। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: सर एक लाइन सुना दो थोड़ी सी।
0: जी जी प्लीज, पहले बताइए गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: गीत आप मास्टर श्रीन के बारे में सुनने वाले।
0: ठीक है, आप बताइए कौन सा गीत सुनाएंगे, सुनाइए।
1: तेरा शंगड़ा अले बेला की में मार के मुझे कभी गायों के संग कभी ग्वालों के संग कभी बंसी बजाए मेरी मंडी में मार के। हेलो
0: जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है जी। आपकी पसंद का गीत अब तक पहुंच रहा है हमें कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी।

किसी भी पंजाबी गीत में शामिल करें। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र तो संतोष खट से, विनोद खट से, और एक दिन कोई भी पंजाबी गीत सुनवा दो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तुम शायद इस नंबर तो सानू कॉल करने की कोशिश की है जी। असं सारे सुनने वाले एक बेनती करनी चाहवागे कि व्हाट्सएप नंबर पर कॉल नहीं करनी जी, सिर्फ मैसेज भेजने। कॉल करने वास्ते नंबर 0181 23 42 171। तो लो जी फिर हम सुनते हैं बिट्टू जी की पसंद का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ा में। प्रोग्राम सुगात चल रहा जी, तुम ट्यून किया आकाशवाणी का जलंधर केंद्र। इस गीत तो बाद आज दोस्त अमित फिर हाजिर होंगे जी।

0: हेलो
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने किस जगह तो?
1: मैं सुधीर नूतन बोल रहा हूँ मॉडल टाउन करनाल तो।
0: हेलो,
1: मॉडल
0: अपना नाम दसो जी, किस जगह तो बोल रहे हो?
1: सुधीर नूतन मॉडल टाउन करनाल से।
0: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका प्रोग्राम सुगात में। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मेरे को शेरी अमान मान की आवाज में कोई गीत सुना दो, चरकदा फड़कदा।
0: थैंक यू जी कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है जी, थैंक यू।

0: प्रोग्राम चल रहा जी सौगात और आओ फिर गलबात करते हैं प्रोग्राम के आखिरी कॉलर के नाल। हैलो
1: हैलो नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, किहड़ा गीत सुनना चाहोगे? अपना नाम दसो जी।
1: मैं तरसेम बोल रहा हूं।
0: तरसेम जी, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी, की हाल चाल है?
1: बहुत बहुत तू सुनाओ जी।
0: कड़ी सुइयां कह रहे हैं कि प्रोग्राम समाप्ति वाला, इसलिए फटाफट दसो किहड़ा गीत सुनना चाहते हो?
1: कोई भी सुनाओ।
0: शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी पसंद का गीत तद तक पहुँच गया।

गाइए गुण गोपाल कृपा निध, दुख बेदारन सुखदाते सतगुर, जाको पेटत हुए सगल सिद्ध। ए गुरवाक अकाल पुरख परमात्मा ते पूरन भरोसा रखण वाले गुरमुख जना दे हिरदे दी उस लोचा दी तर्जमानी करता है, जिस विच्चों प्रभु दे गुण गायन करन दी तीबर इच्छा प्रगट हुंदी है। पर प्रभु दा गुण गायन प्रभु दी कृपा तो बिना नहीं हो सकता। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी राग कल्याण विच उचारत शब्द विच अकाल पुरख परमात्मा पासों ऐसी कृपा दी जाचना करदे हन। आप सुंदर दृष्टांत दिंदे हन कि जिस तरह पंवरा फुल्लां दे आले दुआले मंडरौंदा होया गुणगुणौंदा है, हे प्रभु मेरा मन आप जी दे चरण कमलां दा पंवरा बन के आप जी दे गुण गायन करदा रहे, साढ़े ते ऐसी कृपा करो जी। फरमान है हमार है एह कृपा की जय, अल मकरंद चरण कमल स्यों मन फेर फेर रीझै। श्रवण करदे हां डॉक्टर अलंकार सिंह होरां वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

हमारे एक कृपा की जय। अल मकरंद चरण कमल स्यों मन फेर फेर रीझे। इस शब्द गायन की तासी डॉक्टर अलंकार सिंह होरा। प्रभु दा नाम जीवन दा आधार है, संतां भगतां दा ऊट आसरा है, उन्हां दी पूंजी है। नाम

0: अम तीन गऊ ते पारजात रुख दे तुल है। ए दृष्टांत इस करके दिते गए हन कि नाम सर्व सुखदायक है। कलयुग दी रुत विच नाम रूपी बीज बीजण दी हिदायत है। ए बीज अंकुरित होके एक दिन पारजात रुख बन जांदा है, जिस दे फुल ते फल अनेक प्रकार दे हुंदे हन, मानो रतन जवेहर प्राप्त हो जांदे हन। दरअसल ए अनंदत हिरदे दी आत्मिक सिखरली आनंदमयी अवस्था है। इंच महसूस हुंदा है कि मानो बसंत रुत विच एक अनोखा रुख जम्या है। सुनदे हां डॉक्टर सोहन सिंह होरां पासों वार्ता, बिरख जम्यो है पार जात।
1: मनुख हमेशा ही अपने जीवन नू सुखी बनाउन वाल लगा रहिंदा है। उस दी हर एक सोच ते हर एक जतन सुख दी प्राप्ति ते दुख दी निवृत्ति लई ही हुंदा है। इस सुख दी प्राप्ति लई ओ अनेक भांत दे जायज़ ते नाजायज़ काम भी करदा है। सुख नू भोगण दी लालसा किसे एक विशेष समय दे मनुख दी ही नहीं, बल्कि ये हर समय दे मनुखां दे सुभा दा हिस्सा बनी रही है। इसे लालसा अधीन जिथे अज दा मनुख पैसे दी ताकत राही सुख प्राप्ति दे साधना नू जुटाउण विच व्याकुल होया दिखाई देंदा है, उथे पौराणिक कथावां विचों भी अनेक अजिहियां उदाहरणां सामने आउंदियां हन जिन्हां तों अजिही ही भावना दा पता लगदा है। सुख दा संबंध क्योंकि मन दी इच्छा नाल हुंदा है अते इन्हां पौराणिक कथावां विच्चों अनेक अजिहे करामाती साधना दी सूह मिलदी है जिन्हां द्वारा इन्हां साधना दे मालकां नूं बिना किसे यतन दे मन इच्छित फल दी प्राप्ति हो जांदी है। इन्हां करामाती साधना विच्चों काम तेन गऊ वांग ही मनोकामनावां पूरियां करन वाले पारजात नां दे एक रुख दा जिक्र भी आउंदा है। इस रुख संबंधी ये कथा प्रचलित है कि देवतियां दे राजा इंद्र दे नंदन बाग विच अपने विशेष गुणा करके जाने जांदे मंदार, संतान, कल्प, हरि ते पारजात पंज उत्तम किस्म दे रुख सन। पारजात रुख देवतियां नूं समुंदर मंथन दे समय प्राप्त होया सी। इस रुख नूं कृष्ण जी ने इंद्र दे बाग विचों पुट के अपनी प्यारी सतभामां लई लै आंदा। इस पौराणिक कथा दा जिक्र गुरु नानक देव जी ने राग आसा दी वार विचले अपने सलोक जुज मैं है जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लै आया बिंद्रा बन मह रंग किया विच भी कीता है। लोकाई दे कल्याण दी भावना नू सामने रखदे होए बाणीकारां ने क्योंकि बाणी संदेश लोकां तक पहुँचाउण लई हर एक विधि नू अपनाया है, इसे लई उन्हां ने पौराणिक कथावां दे हवालियां राहीं भी अपनी गल लोकां तक पहुँचाई। गुरबाणी विच बेशक अजिहे होर भी अनेक हवाले वरते गए हन, पर किते भी बाणीकारां दा उदेश इन्हां दी स्थापती जां प्रोड़ता करना नहीं बनदा, बल्कि समूह बाणीकार केवल इन्हां पौराणिक संकल्पां नूं एक माध्यम वजों ही अपनाउंदे हन। इस श्लोक विच भी गुरु नानक देव जी मुक्ति दा साधन केवल निर्माणता सहित कीती गई प्रभु बंदगी नूं ही प्रवान करदे हन। इस प्रकार गुरु दृष्टि विच सब तो वड्डा ते इकलौता पारजात केवल ते केवल प्रभु नाम ही है। सुखमनी साहिब विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी इस संबंधी स्पष्ट निर्णय करदे हुए फरमाउंदे हन, पारजात इह हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की

0: कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। इस प्रकार प्रभु नाम ही अजिहा पार जात है जिस नाल सारे दुखां तो छुटकारा मिल जाता है ते मनुख सदीवी आनंद की भी प्राप्ति हो जाती है। इस पारजात नाम की प्राप्ति प्रभु प्यारियां नूं क्योंकि उसकी रजा विच रहिंदिआं सिमरन अभ्यास सदका हो चुकी हुंदी है, इसलिए मनुख भी अजिहे पूर्ण पुरशां की संगत विच विचर के इस बरकत नूं प्राप्त कर सकता है। जदों उसनूं प्रभु कृपा द्वारा इस नियामत की बख्शिश हो जाती है तो उसका जन्म मरण का गेड़ मुक जाता है। उसनूं जदों नाम का रंग चढ़ता है तो यह उस लई होली अते बसंत रूपी बहार का त्यौहार बन जाता है। उस लई ओ घड़ी पल आदि सब सारे शुभ हो जाते हैं। इसे लई गुरु नानक पातशाह राग गुजरी विच जग्यासु नू माया दे कूड़े जंजाल नू त्यागदिया सर्वव्यापक प्रभु दा नाम सिमरन करन दा उपदेश करदे हन, क्योंकि शरीर रूपी घर दे वेड़े विच लगा ए अजिहा पारजात रुख है जिस दे फुल पत्ते डालियां आदि सब सच दियां हन अते सच्चा आचरण ही गुरु साहिब अनुसार सब तो उत्तम है। गुरु साहिब का फुरमान है, पार जात कर आंगन मेरा पोहप पत्र तत डाला सर्ब ज्योत निरंजन संभु छोड़ो बहुत जंजाला। सुन सिखवंते नानक बिनवै छोड़ो माया जाला मन विचार एक लिव लागी पुनरप जन्म ना काला। बेशक इथे नाम नूं ही पारजात कहा गया है, पर क्योंकि जदों नाम हिरदे विच वस जाता है तो नाम का अभ्यासी भी नाम रूप ही हो जाता है। इसलिए नाम की शक्ति द्वारा नाम अभ्यासी भी नाम रूपी पारजात वांग मनोकामनावां पूरियां करन वाला पर उपकारी हो निबड़दा है। तेर मेर दी भावना तो मुक्त होया वह पर उपकारी सारिया विच एक इलाही नूर दे दीदार करदा होया अपने साए हेठ आउण वालियां नूं केवल दातां ही वंडदा है। उस दियां दातां दी सिखर इत्थों तक पुज जांदी है कि मनोकामना धारण करके आए कश्मीरी पंडितां लई दिल्ली चांदनी चौंक विच अपने शरीर नूं भी निशावर कर देंदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी दे रूप विच अपने पिता ते पुत्रां समेत सारा सरबंश ही पर उपकार दे लेखे ला देंदा है। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर वांग बेशक उस दे शरीर दा मास जमूरा नाल नोचिया जावे जां उस दे मासूम बाल दा दिल कढ के उस दे मूंह विच पाया जावे वह जरा नहीं डोलदा, क्योंकि नाम की शक्ति द्वारा उसका चित ते देही बेहद सुंदर ते प्रफुल्लित हो जाते हैं। मौसमां अते हालातों का उन्हां ते कोई प्रभाव नहीं पैंदा, बल्कि वह हर मौसम ते हर हालात विच सदा खिड़े रहिंदे हन। इस पारजात रुख नूं अनक भांत दे रतना वर्गे जवाहर मेवे लगते हैं जिस नाल उसका हिरदा तृप्त हो जाता है। अजिहे तृप्त हिरदे विचों केवल हरी जस ही प्रवाहमान हुंदा है। मन तन मौल्यो अत अनूप सूकै नाही शाब तूप सगली रूति हरिया होए सद बसंत गुर मिले देव बिरख जम्यो है पार जात फूल लगे फल रतन पांत तृप्त अगाने हर गुणे गाए जन नानक हर हर हर त्याए।
1: बिरख जम्यो है पार जात। ये वार्ता सुना रहे सन डॉक्टर सोहन सिंह।

गुरमत अनुसार कोई भी कीता होया कारज बहुपक्षी लाभदायक हुंदा है। गुरमत विच सतसंगत दी भी महानता है। जिथे संत संगत गुरमुख जना दी संगत भी वर्णन योग है। एक वचन विच संत पद गुरु वास्ते वरत्या जांदा है, अर्थात गुरु दी सेवा संतां दी सेवा विचों अनेकां फल प्राप्त हुंदे ने। आत्मिक खेड़ा प्राप्त हुंदा है, हिरदे दे विच मंगल चार वाली अवस्था बन जांदी है, ते आप मुहारे प्रभु दे गुण गायन करन नूं चित करदा है, ते प्रभु प्यारे जन कह उठदे हन, गुर सेवाओ कर नमस्कार, आज हमारे मंगल चार, आज हमारे महा आनंद, चिंत लथी पेटे गोबिंद। सरवण करदे हां भाई गुरदयाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

गुर सेवाओ कर नमस्कार, आज हमारे मंगलचार, आज हमारे महा आनंद, चिंत लथी पेटे गोबिंद। इस शब्द गायन कीता सी भाई गुरदयाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

सतगुरु सतगुरु सतगुरु को बिंद जियो बले छलन सबल मलन भगत फलन कान कुर नेक लंक बजी डंक चढ़ू दल अरविंद जियो राम रवन दुर दवन सकल पवन कुशल करन सर्ब पूत आप ही देवाद देव सैस मुख फनिंद जियो जरम करम मछ कछ हो बरा जमना के कोल खेल खिलो जिनगिंद जियो नाम सार हिये तार तज विकार मन गंद सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोबिंद जियो।

आवत कट्यो ना जातो प्रेम रस चरण कमल संग दावन बंद्यो ना जात बिदे मन दर्श।